कुलू तड़ी रड़े राम मीना मन नसी चूल चूल चोलो यो जहान मन नसी शितुसी दिमिश आवाज बर्दाश कवे दिमिश आवाज और वे जनाब दग गेंटा मुझदों सर बर्दाश कवे चूल अवरिदुन को यो जहान मन नसी बिल्कुल जनाब प्रोग्राम के बतू से हर सहे मुसर वी प्रोग्राम से खबर है कवे और प्रोग्राम से खबर है तेरे की मजलसुनो बकी

अस्सलाम वालेकुम, बाय हाउ आर यू, बाय क्रीम एंड फेस वॉश आया है कि नहीं, सबको सलाम। आई एम जुया, जुया से मखूरी नोटेंस एंड डायमंड फॉर्मूला क्रीम हरोगली दीसी वीरसरा वेटमसी फेस वॉश हरोगले दशा मिला विशेषा।

0: म्हणजे सडी व्हायले तसे मग सडी व्हायचं हवेले तसे बड़ी गुस्सा है तुम हर याद हो उसे तमीज सिखाओ दस्तक भी नहीं देती है और दिल में उतर जाती है रोनिश तनहा डेरे उन्हें
1: तेरे बिचके दे घुबरा गिस तर गे तेरे बिचके दे
0: और भाई अच्छा फिर तुम्हें मैंने लेना है क्रीम एंड फेस वॉश आई एम सो बिल्कुल वाह खा हो रे और बोलो भाई जी आपके न्यू फेस वॉश के लिए हैं आई एम सॉबियो सभी जमा खोरी डेरे मना खुशहाल है शाह और बोलो भाई जी यहाँ पो डेरे मना चाह सो बिल्कुल यू बर कलर दे रहा सर अस्सलाम वालेकुम कोर दिया बात से शाबाद जी को दे दसरो का नंबर डाक शक्त खबर है कवा के ना قال ملو گزی پیسی دی نوی نہ بنے مسلمان شاغیش
1: جنانا
0: خبر ایک واشا
1: یعنی
0: بس پیسی بد نوی نو زیا واشا سنگ بیٹی سلمہ ماسکن کنے کلا کلا بے بخوس

0: खुशी अस्सलाम वालेकुम भाई जान संगे वेलकम बखीर आली और सलाम सब सिस्टर को शाजी मरवड़ी रे मन से हम मनाल जमा खुर पता निष्ठा हा और कैसे ले दशा खुश भाई हसीना ये दवा चिता ता चिता ता हसीना नाम वाखली समा खान दी खुशाल शकड़ी रे मन से सारा मिसुद सही हा हसीना जमा कुर्सी रे मन चित जमीश प्रोग्राम और वेशा डी रे रे मन से
1: ए हुसन दारी
0: No tension, wait a minute, see face wash, what a sham, Hasina, Kurki Jara, sham, Jara, the mata, no tension, vitamin Z, face wash, Kurki let it take a shah, let it take away the Jimata, Shaba, vitamin C, face wash, Niwana, Manamasha, Ulan, take a shah. Wadamazi, Wadaman, Tension, Richaman, Sea, Swash, Wadaman, Yawakabar, and Manasha. Take the Zee, Yavatasa, Villaver, Shikini Hazina, Neda Taradija, Yabajani, Jarana Makara, take the Zee, Tabataja Mama, Mamu Cherta, Jara, Jarala Zoro, Kesha. अच्छा जी अच्छा हाँ हाँ भाई शो सुन रही हूँ आया मनाल हो गया मनाल जमाखोर ब्याह बना मन अच्छा मुंगे गुरा फ्रेंड दी मत याद दी विशा जमाव गुरा जमुंगा फ्रेंड दी कम से रुकी दी कम से ने दिशा आखु मडेरा मत की जी चोरा कसले दा क्या मुझे भी वजीरिस्तान तो दिले दा गुरा सुरान अगले क्या ना मत पता वो लगी दस्ते मैं मजगो सटक ना खुदा पर का मनाल से तरुक दा अच्छा So के जी और दुन गुटाम रसर पुरा शाम पोटेंशियल विटामिन सी फेस वॉश विटामिन सी फेस वॉश नैलवा और वेरसेरा वेरसेरा न्यूट्रिशन डायमंड फार्मूला क्रीम सुन को मिला विश रवाय खले को मार्केट की दी छी हम उस लाट से जानला प्रोडक्ट्स अवेलेबल के हां जी सुपर ग्राम टाइम में और से खत्म शुरू करता वो से खादो से आबादो से पलरोल नजमर पर दुआगानो के आते दे हम पता खबर आ के छे दर्जन वो सगानो फौग रे सगाने तली रातले मरगी लरगी ने ग्रुप जी मर गए बिना ने ना शुक्र सर बस ब्या मुलाकात को लासी मन से और हो सकते शवीर आशम खास जगह से लेकिन मुसरफियात ही नहीं इंशाल्लाह रसम बड़ी लिखा सुबह रजी बाय बाय टाटा एंड लव यू ऑल थैंक यू खामोश ने सुना दलो अपमान और क्या

जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सुबह बरतारे खदर से दासो खिदमत के इसमें कसम है पाकिस्तान प्रोग्राम सर अमील रमा सुन रहा मीन वाल दिया खबर ठीक ठाक फिट फाट खुशहाल सुखाल बबी और सेहत व जमो के बबी टोलो मीना वालो था चरता चरता के मां बाज रदशी इसमें कसम है पाकिस्तान प्रोग्राम की ओर से डेढ़ हर के लिए वही प्रोग्राम में इसमें कस्मेटिक थी माता वेली सुबह तारीख प्रोग्राम माता सुबह दी छे इसमें कस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम से मुख्तलिफ टाइम टाइम बने था सुखी गी यानी कि तीन चार बजे बरे हम दिशा नौ दस बजे वर्ष वर्ष रात सहर दस ग्यारह बजे ता सकी गी और मुक्त हम चिकला हम कह में लगी ता सुबह मत के जरूर हाजिरी गो सुन रहा मी नवाल देते हमारे मुंगा वाज जरी का करक रेडियो और री यादी ने इलावा आगा टांक रेडियो और री यादी ने इलावा पेगाम रेडियो मर्दान रेडियो और री या दिन लो वतन रेडियो दीर वतन रेडियो तगबे या दिन लो शमाल रेडियो बाजवर वर्षा वर्षा आवाज एफएम अटक रेडियो अवरी टोलो था देश में कस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम की हर के लिए

अच्छा जी, प्रोग्राम की बनन यो सवाल हम कोमा प्रोग्राम की बता सुना जो सवाल हम तपोस को ओमा छे ददे सवाल जवाब सदे अच्छा छे जवाब राख रो देखता नु आगे दबा इंशाल्लाह इसमें कॉस्मेटिक तरफ ना गिफ्ट जरूर मिले वीगी खा हाँ जी बिल्कुल सवाल चुकुम दे दग दे प्रोग्राम इसमें कॉस्मेटिक है बिल्कुल आगा सशे दी ठीक था अच्छी मतलब कला पैदा की गई ठीक था नौ सड़े चुकुम दे ज्यादा पगम की भी डे ज्यादा खफा भी सही था और अच्छी कला खत्म सी ब्याह सड़े डे ज्यादा खुशहाल भी ददी सवाल जवाब रात रख वाली सी ठीक था बिल्कुल हवा सशी दी चे मतलब कला वो लगी कि ठीक था नुबिया सड़े इंसान डे ज्यादा खफा भी ठीक था और डे ज्यादा गम की भी और चिकला मतलब खत्म सी नो अगेन बाद ब्याह सड़े खुशहाल भी खा दे सवाल जवाब रखे वाली सी प्रोग्राम इसमें कॉस्मेटिक दे मात वेली सी सुबह पर तारीख अच्छा जी कॉल रजी कॉल शामिल प्रोग्राम की खो लग शांति नजर उड़वाने जो मतासु मैसेज बांधे जी चाहो दिक्कत देना मुंग तो मैसेज करे

बिल्कुल जनाब, आप मैं बात करूंगा चिकित्सन का जो ताकत प्लस फार्मूला है इसमें क्या क्या चीज मौजूद है। बिल्कुल जनाब, इसमें अश्वगंधा मौजूद है। ठीक है जनाब, इसमें जो है ना मैं आपको बता दूं, इसमें बादाम है, अखरोट है। ठीक है जनाब, इसमें सब्जी इलायची है, सौंफ है। ठीक है जनाब, इसके अलावा और भी किस्म की इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें जो है ना आपको मैं क्या बताऊं जनाब, इसमें खुश्क मेवा जात है। ठीक है जनाब, इसके अलावा मजीद आपको बताते चले, किस्म का ताकत प्लस अगर नीम गर्म दूध के साथ मैंने आपको बताया इस्तेमाल किया जाए तो ये जहनी दबाव, बेचैनी और बेख्वाबी को दूर करने के लिए एक इंतहाई मौसर और कुदरती असाबी टॉनिक साबित होता है। इसके अंदर मौजूद जड़ी बूटियों में वजात और कुदरती अज़ा के इम्तिज़ाज दूध के साथ मिलकर असाबी निज़ाम पर दर्ज ज़ैल साइंसी कुदरती अंदाज में नजरअंदाज होता है। सो बिल्कुल जनाब, का 700 चिकम तकीसन चिकम ताकत पल फार्मूला था दे 700 कल दा शोधो सर द नीम ग्राम शोधो सर इस्तेमाल हो का 700 द बेख्वाबी मसलो भी 700 द खूब नाराजी। बिल्कुल जनाब दी और नूर हम दी ज्यादा फायदे दी। बिल्कुल जनाब, 700 चिकल दा कीसन चिकम ताकत पल फार्मूला दा द नीम ग्राम शोधो सर इस्तेमाल हो दे सर 700 चिकम दा स्ट्रेस दे 700 कम टेंशन दे दा सर खत्म हो जी। सही दिखने जनाब, और इसके साथ साथ आपको ताकत भी मिलेगी। तो बिल्कुल जनाब दी लव जनाब, चिकम दा कोर्टिसोल भी द जहनी दबाव भी सांसो जहनी तनाव चिकम पे दखल हारमोन भी अब हम जरा बराबरी सी और जनाब खबर रखू चिकम द शोधी भी दी सी कुदरती तुर बंदे ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड चिकम मौजूद है। और बिल्कुल जनाब, और जब ये बादाम अखरोट और शतावरी के साथ मिलता है तो दिमाग में खुशी और सुकून देने वाले हारमोन पैदा होते हैं। तो बिल्कुल जनाब, जिससे गहरी पुरसकून और बेखलल नींद आती है, आसाबी निजाम की बहाली और ठंडक, सफेद मुसली और सतावर आसाब की खुश्की और गर्मी को जायल करते हैं, जबकि सब्जी इलायची और सौंफ दिमागी रगों के खिंचाव को खत्म करने की फरहत और सुकून बख्शते हैं। बिल्कुल जनाब, अखरोट है, पिस्ता है, काजू है, में मौजूद ओमेगा फैटी एसिड्स और विटामिन ई बल्कि जहनी थकावट, चिचड़ापन और आसाबी कमजोरी को दूर करने के याददाश्त फोकस बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जनाब, इसके अलावा भुने चने और सत्तू फटू और जिस्मानी तवानाई को सहारा देते हैं, जबकि मैदे में तजाबियत या बेचैनी पैदा नहीं होने देते क्योंकि पुरसकून नींद के लिए हाजमे का दुरुस्त और हल्का होना जरूरी है। बिल्कुल जनाब, रात को सोने से पहले इस्तेमाल करने का तरीका जो है ना नोट फरमा लीजिए। रात को सोने से आधा घंटा पहले, एक घंटा पहले, 1 से 1.5 चम्मच केसन ताकत प्लस 1 गिलास हल्के घी नीम गर्म दूध में मिक्स करके पीना असाब को रिलैक्स करने और गहरी नींद के लिए बेहतरीन वक्त है। क्या बिल्कुल जनाब, बिल्कुल जनाब, द केसन चिकम द ताकत प्लस फार्मूला दादा इस्तेमाल वाले तरीका है दादा ची यू या यू नीम चम्मच दे चिकम द केसन ताकत प्लस वी दा यू गिलास या नीम गिलास नीम गर्म शोधी भी दी ची मिक्स कई अबिया वो चीज इस तरह इनशाला खूब हम डेर खरा दी। बिल्कुल जनाब, डीर ज्यादा दास मरीजान हमशता चेवाई अनस भाई माला खूब बिल्कुल नाराज। बिल्कुल जनाब, के सांसों तो हम खूब नाराजी नन हमरावड़ी द कीसन चिकम द ताकत वाल फार्मूला दा चिकम सांसों अंदरूनी मसाइल दी सांसों अंदरूनी कमजोरी दा सांसों पटी कमजोरी दी सांसों जिगर विन न जोड़े सांसों मैदा खराब हो दा। बिल्कुल जनाब, सांसों ने शयान इरीगी सांसों वजह नस भाई बाजार तजम या बान शयान इरी जी। बिल्कुल जनाब, के सांसों ने हम चीज शयान इरी जी नन अकबर जान तरावड़ी द कीसन ताकत वाल फार्मूला। बिल्कुल जनाब, नाम उधर कीसन चिकम द ताकत प्लस फार्मूला दा दी फैदी दी और इंशाल्लाह जिसा हम नन पर इस्तेमाल करी दी डीर खदे और डीर जबरदस्त दे। और बिल्कुल जनाब, वो लिच डीर ज्यादा खलक वही चीज अनस भाई मा वजन हम डीर ज्यादा कम दे। बिल्कुल जनाब, दी सरब सासो वजन हम ज्यादा जी ना मतलब ची बराबर है बशी सांसों चिकल कमजोरी महसूस कीजिए चिकल सांसों कीसन चिकम द ताकत प्लस फार्मूला दा इस्तेमाल की अखीर सरब इंशाल्लाह सांसों कमजोरी न महसूस कीजिए और सुमर हम दस खलक दी चे मजदूरी कभी और डीर सख्त कार कभी और चिकल और मशाम कोर्त सड़ी राजी जनाब अखुद पर हम डीर खाइस्त दी डीर और जबरदस्त रिजल्ट दे चिकम था कम दबी रखेगी कीसन ताकत प्लस फार्मूला। बिल्कुल जनाब, अहोद पर हम डीर शे स्कूल वाई सबक वाई द दफ्तर कार कई का हिफ्स की लग गया दी द जहनी तकद पर हम डीर शे सिरकन जनाब सांसु चिरे मसले भी द सांसु कमजोरी मसले दा सांसु कमजोरी में सिस को वाई चिनस भाई द मख मियर वक डीले डीले भी खलक रहा था वाई ची बीमार शे वाई होने ये। और बिल्कुल जनाब, और सांसु रख खलक वाई चिनन से बखुड़ी रखो चार ने अब सांसु खलक दमाई ची भरू रनन समय में जकम द कीसन ताकत प्लस फार्मूला दा करना दा इस्तेमाल वाले गया।
بالکل جناب ضروری دا دا چکم دا کیسن او طاقت پلس فارمولا دا پستاسو نیم گرم شودو سر استعمال او یو چمچ یا یو نیم چمچ دبا نیم گرم نیم گرم شودو یو گلاس کی بواد چو اگی چب میری نیٹ کو مکس کو بیا چھ شپی چکل ساسو چملی اگی ٹیم تے بچو سری گنز جناب ساسو ربڑی رخا او ڈی زبردست رزم ملا وی ساسو چکم دا مسلی دی ساسو اندرونی کم چکم مزوری دا پٹی کمزوری دی میں دم خراب ہوئی سری گنز جناب ساسو جگر او وین نہ جڑے وی سری گنز جناب اگیدہ پر ہم ڈیر خدی ڈیر اور زبردست ہے کی سنا تا کل بس فارمولا ابھی کچھ جناب یہ آخری خبر ہے بدا کوم چی اکثر ساسو کرو کی او دا سے چکم بزرگان وی چی اگو ہم ڈیری زیادہ مسلی وی اگو لا سنا تری چی دا چائے کپ ہم نسی اخیست ہے او بو ہم نسی چی چکم مڑی بھی آ ہم نسی کھوڑ لے اگی چکم پٹی دور کمزوری وی چی لا سنا تری چی بالکل جناب اکثر کورون چی دا سے مشران ستا اگو تا پر ہم یقین منی گرانو آر ویدن کو دور بہترین پروڈکٹ دی دور خ پروڈکٹ دی دا کیسن طاقت پلس چی اگو چکم لا سنا تری چی اب ان سلبر سر ایسی او استعمال اول طریقہ یو پھر تی بیا جان سر نوٹ کی جناب یو یا یو نیم چمچ دی کیسن طاقت پلس فارمولی وی چکم دیول پکی دا دی کی دیر زیاد مغزیات موجود دی اخروٹ دی بدام دی نور ہم دیر زیاد سپلیمنٹ دی او دا چکل ساس یو یا یو نیم چمچ چکل یو گلاس نیم گرم شودی وی اگی چی مسکو سر استعمال ہو انشاءاللہ ساسو دا ٹولے چکم اندرونی مسلی دی دا بٹولے ختمی شی او ساسو با انشاءاللہ دا کمزوری نہ محسوس کرے سر کنم جناب چنور چکم ساسو دردو مسلی بیرونی او ساسو دیر دردو دا پارا گرزی دلی وی دردو دا پالا کیسن اور شفائے درد آئیلا بالکل جناب بالکل جناب اوز دا کالر ٹائم دا بالکل جناب ابھی کال کا ٹائم ہو چاہتا ہے جتنے بھی کالرز ہیں انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے سو بالکل جناب 0313-96-70-988 پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور شو کا حصہ بن سکتے ہیں 0313-96-70-988 پر 0313-96-709-88 پر آپ مجھے کال

0: के दवाई के आप हमें कोई ऐसी, क्योंकि आप हकीम हो, आप जड़ी बूटियों से मुंसलिक हो,
1: ऐसी बात है,
0: तो आप कोई जड़ी बूटियां ऐसी बता दें जिसे हम कूट के तो हम अपना इलाज कर सकें,
1: ऐसी बात है।
0: तो अगर उसमें कोई कमी पेशी रहेगी तो फिर हम इलाज मुआवजा कर लेंगे, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन से काफी ज्यादा एलर्जिक हैं। तो उन्हें मैंने कहा कि बेशक देसी दवाई है ही जड़ी बूटी पे और बेस है, और कुछ बूटी ऐसी हैं मुफरदात या जड़ी बूटियां कह लें कि जो हमारी पूरी बॉडी के लिए हैं, और शायद एक जो है इनमें बहुत अहम है, तकरीबन हर दर्द की दवाई का या असाबी कमजोरी में वो जुजे आजम के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, और वो है असगंध नागौरी।
1: असगंध नागौरी,
0: ठीक है। वैसे इसे हिंदी में देखें तो ये अश्वगंधा कहलाती है।
1: अश्वगंधा, हाँ ये तो हमने सुना है,
0: क्योंकि अमूमन इंडियन जो मेडिसिन आती हैं दर्दों से या असाबी कमजोरी से लेते हैं, ये उसमें जुजे आजम है अश्वगंधा।
1: अच्छा,
0: ठीक है। पतली पतली डंडियां होती हैं और बहुत जबरदस्त है, यानी इसको मेल फीमेल इस्तेमाल कर सकता है।
1: ठीक है,
0: ठीक है। लेकिन इसके लिए है जो हकीकत में है वो यही है कि ये लाजमी नहीं होता कि जड़ी बूटी जिससे दर्द की दवाई बन रही है,
1: ठीक है,
0: वो लाजिम नहीं है कि वो उसी दर्द पे काम करेगी। इसलिए मौलिक से मशवरा करना जरूरी है, ठीक है ना।
1: लाजमी
0: बाकी जहां तक है इसकी डेफिनेशन का, तो ये तकरीबन कह लें कि हर पंसारी से मिल जाती है, इतनी महंगी नहीं है। दूसरा, असाबी दवाइयों में इस्तेमाल होती है, आप इससे पाउडर की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: ठीक है,
0: और दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिला के भी आप इसका मुरक्कब बना सकते हैं,
1: ठीक है।
0: तो अगर आप इसको सिंगल डोज में भी इस्तेमाल करें कि सिंगल रेमेडी में इसे ले लेते हैं कि सिंगल डोज बनाते हैं, तो आप इसको पाउडर बना के रख सकते हैं और इसकी हाफ टेबल टी स्पून,
1: ठीक है,
0: ठीक है, वो
1: जी
0: आधी जो है वो आप दूध से या पानी से आप ले सकते हैं,
1: ठीक है।
0: तो ये दर्दों के लिए काफी कारामद है। बाकी अमूमन तौर पे जो है थकावट है या कह लें कि किसी भी किस्म की दर्दें हैं, कमर में है, टांगों में है, या हमारे पूरी बॉडी में कहीं भी है, उसके लिए ये बहुत जबरदस्त चीज है। और
1: जी जी,
0: दूसरा इसका जो मेन है वो ये है कि ये नींद भी लाती है, पुरसकून,
1: ठीक है,
0: और जिस्म को आराम भी देती है। बाकी अगर कैफियतें इसकी देखें तो बेशुमार है, लेकिन बात वही है कि मौलिज के मशवरे के बगैर हम इसे इस्तेमाल इसलिए नहीं ज्यादा कर सकते कि हमें नहीं पता कि हमारे दर्द की या हमारी तकलीफ की नोयत क्या है,
1: ठीक है,
0: और इसमें आया ये कारगर होगी या इसके साथ मजीद कोई अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल की जाएंगी,
1: ठीक है।
0: तो बाकी अगर इसको कोई भी जड़ी बूटी है, अगर आप उसे गलत तरीके से गलत मिकदार से अगर इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है फायदे के बजाय वो आपको नुकसान।
1: ऐसी बात है, किसी मौलिज से मशवरा किए बगैर अगर आप इस्तेमाल करेंगे किसी भी जड़ी बूटी को या किसी भी दवाई को, तो हो सकता है, मुमकिन है कि वो आपको नुकसान दे दे।
0: ऐसा ही है।
1: तो जी हकीम साहब,
0: बाकी है कि आप इसका, और दूसरी जो है वो गोंदों में शुमार होती है।
1: अच्छा,
0: ठीक है। जैसे गोंद की कर है, मोचरस है, गोंद कतीरा है, या इसी तरह ये चिनिया गोंद या ढाक गोंद, या फिर इसे उर्फ आम में जो मशहूर है ये है कमरकस के नाम से।
1: कमरकस
0: यानी कमर को कस देती है,
1: ठीक है,
0: ठीक है।
1: अब मजबूत कर देना,
0: बिल्कुल। अब इसमें ये है कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है,
1: ऐसी बात है, बिल्कुल।
0: और दूसरा ये है कि इससे आप खाली कमर का नहीं, आप पट्ठों का, जिस्म में कोई भी दर्द है,
1: बिल्कुल,
0: तो आप उससे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फायदा भी उठा सकते हैं,
1: ठीक है।
0: बाकी इस्तेमाल जो है इसका वो आम हालत में भी हो जाता है, यानी हम इसे जेन्युइन हालत में पाउडर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह ही सेम हाफ टी स्पून एक गर्म दूध के साथ, और इसे दूसरी दवाइयों के साथ भी शामिल किया जा सकता है। बाकी ये लाजमी नहीं है कि अगर इसका नाम कमर कस है तो ये कमर के दर्द में अफाका देगी या कमर को कस देगी।
1: अच्छा,
0: ठीक है। अब कमर दर्द की कई वजूहात हैं, मोरों का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, या

यजंगीरवावी यदनारवाप कि ब्याचा अवयरावस्ती वीना औ कबीलता में वख्ती रीगी ये बपज दी दुनिया का पिर औ तिरशवे औ जदी पटू कु प्री हुम पदी दुनिया जबेलता औ स्वप्न लरमा औ यक ज खबर अच बिल तुंदे ये माँ बवल के लारख अवल मयना ये जमास कसुर सगुनावा ये जदीपकम गुना यवाजी प्रिहौदमा ये जानाना सित बानी यकी देशी बल्ली मान खमुंतल विना ये पजल जुल जलाल कभी वफायम ये असी दिनुम द बेवफा फराकलू लालिया बस देखा नोर बस्ता सो मैसी रीड कमा सिपर 342 311 2292 बा ताजु चिकम देखा ना नो माता ओ कई